अरे अरे मर सुन कौन दामे सू सू है पाकी आनी केत केत ते कब नहीं पाकी केत केत अरे कब है बस सू सू है कब नहीं पाकी और न वर्षों कर कब नहीं